0: You are listening to SeekNet Radio. Right now, we need your help to continue to provide this service to thousands of people all around the world, every single day. If you enjoy this free service, please take a moment right now and go to www.seeknet.com/donation and show your support. Thank you.
1: आप सपना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन है। वो बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। वो सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर वो आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: अरदास कर दी है।
1: हे वाहेगुरु जी, कृपा करके मैनू एहो जी जगह या इंसान कोल भेज दो जिथों मैनू होर ताकत मिले।
0: अते बेअंत कृपा सदका उसकी शक्ति जाग पैंदी है। जिंद कौर अपने आप नू एक रोशनी दी धुन भरी दुनिया विच पाउंदी है।
1: मैनू इत्थे बहुत शांत महसूस हो रहा है।
0: हैरान होके वो देखती है कि ए नूरानी सिख बीबी उसके सामने है।
1: तुसी कौन हो ते मैं किथे हां?
2: असी शहीदां दे मंडल विच हां।
1: ए शहीद कौन होंदे हन?
2: शहीद ओ हुंदे हन जो अपनी अभिलाषा नाल सच दी खातर अपनी जान कुर्बान कर दिंदे हन। मेरा नाम शरण कौर है। तुहाडी तरह मैं भी गुरु गोबिंद सिंह जी दी धी हाँ। उन्होंने मैनू कहा कि मेरी कहानी तुहाडी मदद करेगी। की परेशानी है छोटी भैन, की होया?
1: मैं पहले दिन नवे स्कूल गई सी जिथे मेरी तरह दा कोई नहीं दिखदा। कुछ कुड़िया मेरे को आईया ते मेरी दस्तार खोलन की कोशिश की ते मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिता। मैं बहुत दुखी सी ते मैनू पता नहीं सी लगता कि मैं की करा। इसलिए मैं वाहेगुरु जी नू कहा कि तुसी मैनू मार्ग दिखाओ। आप जी दी की कहानी है?
0: बीबी शरण कौर गंभीरता नाल जिंद कौर दी अखां विच देखते हन ते गल शुरू करते हन।
2: मैं जंग दे समय जिउंदी सी।
0: जिंद कौर हुण अपने सामने अपनी नवी सहेली दी जिंदगी इस तरह देख सकती है जिवें कि वो टीवी ते आ रही होवे।
2: जदों मैं 16 सालां दी सी उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर छड्डिया सी ते दुश्मनां दी फौज ने निश्चा कर लिया सी कि ओ सानू सिखां नू इस धरती तों मिटा देणगे अते गुरु साहिब जी नू वी मार देणगे।
3: खत्म कर दिओ इन्हां नू।
2: गुरु जी उन्हां दे वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ते बाबा जुझार सिंह जी अते कुछ दर्जन खालसे नेड़े दे एक शहर विच जा पहुंचे। वो सब एक किले विच सन जिसका नाम सी चमकौर। अते शाही फौजां जिन्हां विच लखां दी गिणती विच सिपाही सन उन्होंने किले नू चारे पासों घेरा पाया होया सी। ये सब अग दे समुंदर विच शांति दे टापू वांग जापदा सी।
4: सत श्री अकाल।
2: पंजां दे समूह विच खालसा अपने गुरु अगे शहीद होण दी दात दी बेनती करदा है।
5: गुरु साहिब जी अगली सेवा साड़ी लगाओ जी।
6: सानू शहीदी दी दात बख्शो जी तां जो असी इस जीवन दे असल मंतव धर्म दी जंग खातर लड़ सकीए ते फतेह प्राप्त कर सकीए।
2: फिर गुरु साहिब ने कहा तुहाड़े उपर बेअंत किरपा है, एक खिण लई भी डरियो ना ते तुसी सीधा गुरु नानक दी चोली विच जा वसोगे। ध्यान रखियो कदे भी पिठ नहीं दिखाउणी। जिवें मीह दा पानी तेजी नाल किसे ताल च डिगदा है तिवें खालसा बेखौफ मैदान विच उतरिया ते अकाल पुरख विच समा गया। उन्हां दीआं आत्मा स्वर्गां विच इदां चलिया गईआं जिवें एक चिड़ी आकाश विच। मेरा हिरदा यह खूबसूरती देख गलबा गया। मैं यही अरदास करती रही कि मैं भी उन्हां वांग ही हो जावां। मेरी सिर्फ एक इच्छा सी उन्हां नाल किले विच होना। मैं अकाल पुरख नाल वादा किया सी कि मैं भी इन्हां वांग निरपै होवांगी। हे मेरे पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी, मैं केवल एक पासे बैठ के ये सब नहीं देख सकती। कृपा करो मैनू भी अपने पुता वांग शहीदी की दात बख्शो जी। मैं अपने अंदर एक कोमल जिही आवाज सुनी। मैनू तुहाडे उत्ते माण है मेरी प्यारी धीए, तैयार रहो तुसी मैनू छेती ही मिलोगे। मैं जानती सी वो आवाज़ किसती सी। मैनू इउं महसूस होया जिवें मैं पूरी दुनिया की राणी होवां। गुरु पिता जी ते कुछ सिख जो रह गए सन दूजी थां कूच कर गए। दुश्मन उन्हां नू कदे भी फड़ ना सके। अंत विच बेअंत खालसे जंग दे मैदान विच लड़दे होए शहीदी मंडला विच पहुंच गए। मैनू उदों ही पता लगा कि मैं हुण की कर सकती सी। मैं उन्हां शहीदां दी देह नू सत्कार सहित अगन भेट सकती सी। कोर हनेरा सी ते बहुत ठंड भी सी।

0: बस एक औरत है, हाँ इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि वह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया, ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो, सिखी विच रह के।
4: उदों जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां, ते तुहाडे लोड दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनू नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानू कदे डर लगे भी, उदो समय है योध्यां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओ केड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनू लगदा है इस समय ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: Would you like to hear more stories like this one? Come to seeknet.com/stories.
1: کسی کی دی ای نشانی شبد گرو رام داس جی ویاکھیا جگدیپ سنگھ چترکار پردیپ سنگھ
2: سمر سنگھ کرپا کور اٹھو اٹھو کی تھانو ودیا نیند آئی
3: اخیرلی چیز جیڑی مینوں یاد ہے ممی جی نے करो बेनती गाना शुरू ही किता सी ते मेनू नींद आ गई
4: अजीत वीर जी मेनू बड़ा चंगा लगता है जदों तुसी मेनू जगांदे हो
2: आओ वेखिए पहला कौन स्नान करके पाठ करन ली तैयार हुंदा है
3: मैं जित जावांगा
4: मम्मी जी कि मैं बबल पात ले सकती हूँ?
2: आओ पहला सिमरन करिए, फिर कृपा कौर तुसी आज जपजी साहिब करो, मैं जाप साहिब करांगा, सिमर सिंह तुम्हें प्रसाद सवाइये करेंगे।
3: मैंनो बहुत भूख लगी है, आओ छेती छेती पाठ करिए, ताकि मैं नाश्ता कर सका।
4: कि मैं अरदास भी कर सकती हूँ?
2: आओ अनंत साहिब करिए
3: मैं उच्ची उच्ची गावांगा
4: मैं हर वेले कीर्तन सुनना पसंद कर दिया
2: वाहेगुरु जी दा शुक्र है जिसने बास्केटबॉल दी खेड बनाई है मैनू बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है
3: शुक्र है मेरे कोल एवेजे बूट हन मैं किन्नी उच्ची छाल मार सकता हाँ
4: मैं शुक्र कर दिया कि मेरे को तुहाडे वर्गे वीर हन
2: ओ वेखो गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पिछे पंच प्यारे खड़े हन आओ ध्यान नाल हुक्म सुनिए
3: मैनू उना दिया वडिया कृपाना बहुत चंगिया लग दिया हन
4: एक दिन मैं भी पंज प्यारियां विच शामिल होवांगी
2: इस शब्द विच एह सिख्या मिलदी है कि सानू वाहे गुरु नू सदा याद रखना चाहिदा है
3: चलो सारे इकट्ठे शब्द गाइए
4: मैनू तबला बजाना बहुत पसंद है

ये कहानी पसंद आई होवे तो इस तरह दिया हो रही वीडियो सब्सक्राइब करो।